रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बाकी से जो पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

पढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: क्या कहा?

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701 हमारे स्टूडियोज में ठीक एक बज चुके हैं. स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विजवानी सुन रहे हैं. यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक. अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ है हमारा आपका राज आपके साथ सु. Hope everyone's enjoying a beautiful weekend out there.

जो भी है एंजॉय कीजिए। वैसे ब्रिस्बेन में तो बहुत ज्यादा ठंडी है आज कल से, थोड़ी सी वेरी कोल्ड ब्रीज है, तो ट्राई कीजिए आप जितना हो सके धूप में बैठे, क्योंकि बॉडी नीड्स विटामिन डी।

और ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर इंसान दुनिया के बड़े हर तरीके से अपनी जिंदगी जिए। कुछ लोग जिंदगी में शोर और खुश में रहते हैं और कुछ लोग सुकून में। जिंदगी का सही मतलब क्या है? जिंदगी का सही मतलब वही है जहां दिल को चैन मिले और खुद से शिकायत ना हो। इसीलिए दोस्तों लोगों की सोच से ज्यादा अपनी खुशी और सुकून आपको देखना चाहिए।

जैसे आपको पता है शनिवार मस्ती म्यूजिक का प्रोग्राम है और शनिवार का जो प्रोग्राम होता है इसमें ज्यादातर हम मस्ती भरी प्रोग्राम लेकर आते हैं, कुछ ओल्ड हिट्स कुछ न्यू हिट्स, आपकी जो फरमाइश है आप फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन लास्ट आवर हम ज्यादातर बीच पर चले जाते हैं। तो अगर आपके पास पुरानी गीतों की रिक्वेस्ट है तो आप हमें पहले घंटे में रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज। 3279-1701 हमारा स्टूडियो डायरेक्ट लाइन है, और नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं। चलते हैं बहुत समय नहीं लेते हुए, आज का पहला गीत आप सभी के लिए जा रही है जो आज रेडियो ब्रिस्बेन सुन रहे हैं।

रामेंद्र, जय जय जय हो जय राजेंद्र। जगत नारायण के छोड़ के संतो, जगत नारायण के सब हैं यार हम।

तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हैं, आप अपना गीत सुनने के लिए, अपना फरमाइश सुनने के लिए। हम बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबसे पहले आज की पहली फरमाइश हमारे पास है, वह यूएसए से लास वेगास से दक्षा सोलंकी की ओर से। दक्षा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। चलते हैं आपकी फरमाइश से शुरू करते हैं आज की फरमाइशी प्रोग्राम। मुकेश के पास

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग मुकेश की आवाज में प्रदीपा शशि कपूर के लिए इस गीत में आज हमारे साथ शामिल हो गई थी हमारा प्रोग्राम सुन रही लास वेगास में दक्षा सोलंकी। इसके साथ साथ हमारे पास दो तीन कॉल्स आए हैं, लोगों को ये गीत बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल सॉन्ग मुकेश की आवाज में प्रदीपा शशि कपूर के लिए इस गीत में आज हमारे साथ शामिल हो गई थी हमारा प्रोग्राम सुन रही लास वेगास में दक्षा सोलंकी। इसके साथ साथ हमारे पास दो तीन कॉल्स आए हैं, लोगों को ये गीत बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच।
1: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 18 मिनट हो गए हैं 1:00, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान, इसे आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज 17 माइल्स रॉक ब्रिस्बेन से। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो वेलकम। तो चलते एक बार फिर आज आपके साथ। सो समुद्र की लहरें बार बार किराने से टकराती है, वह कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी बार वापस क्यों ना लौटना पड़े। यह हमें यही सिखाती है कि असफलता के बाद भी कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। और हमारे पास अगला जो फरमाइश है, जगजीत सिंह की आवाज़ का ब्यूटीफुल गज़ल है, और इसे फरमाइश किया है किसने, ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।

जगजीत सिंह की आवाज का ब्यूटीफुल गजल और बात कभी कभी सच होती है, इसे आप ध्यान से जरा सुनेगा तो आपको पता है कि वो जगजीत सिंह ने इस गीत को कितना खूबसूरती से, कितना मीनिंगफुल से गाया था, जिसे फरमाइश किया था ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। तो चलते हैं दोस्तों एक बार और दूसरी फरमाइश हमारे पास है। एक बार फिर सैक्रामेंटो से फरमाइश आई है विजयन और कामनी की ओर से, और आप दोनों सुनना चाहते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज का दूसरा गजल।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग जगजीत सिंह नहीं दोस्तों, इस गीत को आपने सुना मेहंदी हसन और नाहिद अख्तर की आवाज में, जिसे फरमाइश करने वाले थे विजय और कामिनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। और उनका कहना है कि दे मेट मेहंदी हसन पर्सनली इन फिजी। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। या अच्छा लगता है ना कोई बिग आर्टिस्ट को जब मिलते हैं, तो इट्स अ बिग फीलिंग, वेरी गुड फीलिंग इनसाइड। तो चलते हैं दोस्तों अगली फरमाइश से, पहले सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की खबर।
1: तेरे केस का क्या हुआ
2: यार? I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi muft kit bhejange. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
0: ਚਲਤੇ ਹੈ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸੁਨਤੇ ਹੈ ਕੁਛ आपके लिए एक ब्यूटीफुल शायरी मैंने लिखकर आई है। शायरी नहीं है लेकिन सुनते हैं क्या है। जैसे कि फूल है ना दोस्तों, फूलों की खुशबू की तरह अपना व्यवहार रखे, जो जहां भी जाए खुशियां बिखेरता चले, क्योंकि शब्दों से ज्यादा लोग आपके व्यवहार को याद रखते हैं। अच्छाई का असर देर से सही पर दिखता जरूर है। शामिल गए हमारे साथ, हम चलते हैं सिडनी की ओर, सनी और रमीजा। जी हाँ, सनी और रमीजा ने अगला गीत की फरमाइश किया है, सयारा।

का टाइटल सॉन्ग ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसे फरमाइश करने वाले थे सनी एंड रामिजा फ्रॉम बैंकस्टाउन सिडनी। चलते हैं शिकागो की ओर। शिकागो से अगली फरमाइश हमारे पास आई है अमला सिंह की ओर से।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में पौने दो बज चुके हैं, साथ ही हमारा आपका ठीक तीन बजे तक यह शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी आईएम हेरिटेज पार्क की ओर बढ़ते हैं और वहां से हमारे साथ शामिल हो गई है साधना। हाय साधना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। चलते हैं आपके लिए अगला गीत सुनते हैं। जब आप मेरी चॉइस सुनना चाहते हैं तो सुनिए।

आज जरूर हमारे साथ शामिल हो गई थी साधना, जो हमें सुन रही हेरिटेज पार्क में। हम चलते हैं सिडनी की ओर, ग्रीन एकर सिडनी से अगला फरमाइश है, यानी कि हमारे साथ शामिल है, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हमेशा की तरह रचेन और मालती प्रसाद। आप दोनों के लिए सुनते क्या

संगीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे रजत मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एका सिडनी। चलिए दोस्तों मेलबर्न की ओर सफर करते हैं और मेलबर्न में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं एल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद। आप दोनों के लिए अगला गीत।

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मेलबर्न से एल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद। दोस्तों इसी के साथ साथ बस दो मिनट रह गए हमारे स्टूडियोज में 2:00 बजने में, साथ ही हमारा आपका ठीक 3 बजे तक है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो बिस्पानी। आई एम आपके साथ सु, शामिल हो गए हमारे साथ। हम चलते हैं मेनली वेस्ट की ओर। लक्ष्मी, आपके लिए अगला गीत।

0: तो दोस्तों इस गीत को फरमाइश करने वाली थी लक्ष्मी फ्रॉम मैनली वेस्ट। हम चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगला गीत से पहले
1: राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: चलते हैं कैलिफोर्निया USA की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे मैक्स प्रसाद। मैक्स आपके लिए भी एक लेटेस्ट गीत।

संगीत पे हमारे साथ शामिल हो गए थे मिक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी। दोस्तों 7 मिनट हो गए हैं 2:00 हमारे स्टूडियोज में। हम चलते एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए कामनी, कामनी नारायण वहां पर सुन रही हैं और अपना गीत सुनना चाहती है। कामनी, चलते आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: देखे दोस्तों, ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसकी फरमाइश करने वाली थी वहाँ कामनी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो USA।
1: और सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 13 मिनट हो गए हैं, 2:07 है हमारा आपका आज ठीक 3 बजे तक। रियल शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्पानी आई एम। जॉइन मी एवरी सैटरडे 1 PM ऑन शनिवार मस्ती म्यूजिक ऑन रेडियो विस्पानी आई एम।

शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो पे स्पनी आई आप सुन रहे हैं, आपके साथ है सु और साथ है हमारा आपका ठीक 3 बजे तक। चलते हैं हमारे साथ, देखिए कौन शामिल हो गए एक बार फिर। कामिनी नारायण, थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग द प्रोग्राम ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

और इसके साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 3:15 बज चुके हैं। दोस्तों बहुत समय हमारे पास नहीं, हम चलते हैं जिम बुम्बा की ओर। सोनिया वहां पर हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और साथ में है जोनी और सविता, उनके साथ में मिलकर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। वेलकम टू पार्टी टाइम प्रोग्राम, सोनिया सविता और जोनी फ्रॉम जिम बुम्बा। आप सभी के लिए अगला गीत।

साथ साथ बस दो मिनट रह गए हैं हमारे स्टूडियोज में 3 बजने में। हमारा आपका साथ आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और आई होप एवरीवन एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर। हमारी अगली मुलाकात है टुमारो संडे को 2:30 से शाम के सफर पर। खुदा हाफिज। टेक केयर। लव यू ऑल। गुड बाय।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव Under the Stars, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।

0: ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, लेकिन इस जिंदगी के सफर में काम भी बहुत सारा है। ऐसा काम जो पूरे हफ्ते आपको थका देता है, थकान से चकनाचूर कर देता है, ढेर सारा स्ट्रेस, ऑफिस में ढेर सारी पॉलिटिक्स, बॉस की ढेर सारी डांट, और फिर घर के भी कितने सारे परेशानियां और आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन इन सबसे निजात पाने के लिए हम सबके हिस्से एक बहुत ही बेहतरीन चीज आती है, और वो है वीकेंड। जी हाँ, सैटरडे और संडे जब जिंदगी में आता है, हर हफ्ते आता है, तो लगता है यार थोड़ा सा रिलैक्स कम से कम हम बाहर की प्रॉब्लम से तो हो सकते हैं। भाई घर में कुछ नहीं चेंज हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम ऑफिस और काम के जो सरदर्द है उससे तो छुट्टी पा सकते हैं। तो ऐसा ही वीकेंड एक और आ गया है हमारी और आपकी जिंदगी में। कुछ खास लम्हे हैं ये जो अब दो दिन आपको परेशान नहीं करेंगे बाहर की बातों के रूप में। तो चलिए अपने वीकेंड को और भी खास बनाते हैं सैटरडे डिलाइट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी, एक बार फिर से आज सैटरडे डिलाइट में आपके साथ और लेकर आई हूँ आपके लिए वीकेंड का ये खास सफर। तो चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं आज के सफर को, और अपने वीकेंड को और भी खास बनाते हुए आने वाले वीक के लिए खुद को करते हैं रिचार्ज। आगे बढ़ते हैं इस एक और गाने के साथ। स्टे ट्यून रेडियो प्रस्वानी 1701 AM, सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट।

0: सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। वैसे दोस्तों ऐसा होता है ना कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें, किसकी बातों पर भरोसा करें किसकी बातों पर ना करें, क्योंकि अक्सर हमारे भरोसे को वही लोग तो ठेस पहुंचाते हैं, उसे वही तोड़ते हैं जिन पर हम आंख बंद करके पूरे दिल से भरोसा कर लेते हैं। तो अब किसी पर भी भरोसा करने से एतबार करने से बहुत डर लगता है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमने उन पर बहुत भरोसा किया और उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। लेकिन वो लोग भी तो हैं जो हमारे ही भरोसे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो भरोसा करिए जरूर, क्योंकि जैसे आप हैं भरोसा निभाने वाले, वैसे ही आपको भी जरूर मिलेंगे जो आपके भरोसे का पूरा मान रखेंगे। आइए इसी विश पर सैटरडे डिलाइट को आगे लेकर चलते हैं और एक और बढ़िया सा बेहतरीन सा गाना जो है वो सुन लेते हैं। यहाँ पर एंजॉय करते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सैटरडे का ये सफर सताक्षी के साथ।
1: अरे

0: गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।
1: पर कुछ होती हैं खास बातें, कुछ होते हैं प्यार भरे तराने और कुछ ऐसी गॉसिप जो यार पूरे हफ्ते नहीं हो पाती है, है ना। कुछ दिल की बातें, कुछ एहसास तो कुछ शरारत, और जब ये सब मिलते हैं तो मूड तो ऑब्वियसली लाइट हो ही जाता है। नहीं तो अपने मूड को थोड़ा और लाइट करते हैं, एक और ट्रैक आपको सुनवाते हैं अभी इस बात पे। इंजॉय कीजिए हमारे साथ सैटरडे डिलाइट और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
2: It's Valentine's Day.

अच्छा, कहते हैं ना कि ये हस्बैंड और वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा दोनों की तकरार जो है वो होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लड़े बिना भी चैन नहीं पड़ता है। भाई खासकर बीवियों की बात करें, जी हाँ, कुछ मामलों में मैं भाई कहूंगी कि हस्बैंड्स बिल्कुल ठीक हैं, बीवियों को लड़े बिना चैन नहीं पड़ता है। अच्छा, हस्बैंड्स क्या करते हैं जब लड़ाई का माहौल हो या उन्हें लगे कि यार बीवी से ज्यादा झगड़े होते हैं, तो अक्सर वाइफ से दूर रहते हैं, है ना, वो भागने के चांसेस खोज निकालते हैं किस तरह से दूर रहा जाए, लेकिन वाइफ जो है वो उनसे लड़ने के बहाने खोजती हैं। अब देखिए ना भाई, कितने प्यार से गाती हैं आपकी, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अरे उस पार ही रहने दीजिए, अगर इस पार आ गए तो फिर फालतू में लड़ेंगी ना। हाँ, तो क्या फायदा अपनी भी टेंशन बढ़ानी और दूसरे की भी, इसलिए ऐसे गाने भी नहीं गाते। आइए आपको एक और ट्रैक सुनवाती हूँ इसी बात पर, एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मवाणी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सैटरडे की खुशबू और सैटरडे की महक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। सैटरडे डिलाइट हम आपको सुनवा रहे हैं और सुनवा रहे हैं सैटरडे के साथ कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने, जबकि वीकेंड्स को और भी स्पेशल और खास बना रहे हैं। तो फिलहाल आपके वीकेंड्स पर आपके सुकून का ख्याल हम रखेंगे इस अगले ट्रैक के साथ। अभी के प्लसिंग टू आपका अपना रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

सो सैटरडे डिलाइट आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और देखिए आप सोच रहे हैं मैं क्यों हंस रही हूँ, भाई ऐसी एक बात याद आ गई तो हंसी आ गई, और आपसे करूंगी तो आप भी जरूर हंसेंगे। भाई सब कहते हैं ना कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, मतलब आप कुछ भी कहिए वो किसी ना किसी के साथ जाके शेयर जरूर करती है, है ना। हाँ तो अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप गलत हैं। भाई इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी औरत ने अपने लवर का नाम अपने हस्बैंड को नहीं बताया है। हाँ देखिए कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती। भाई वो कितने रहे हैं, मतलब कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं ये भी आज तक आपको नहीं पता होगा, नाम तो बहुत दूर की बात है, सोचिए। आइए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम।

सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन जमाने चाहे कोई भी हो जाए, हस्बैंड्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। आप कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किसी बात से कोई मतलब नहीं रहता। इनफैक्ट फोन भी वो अवॉइड करते हैं, भाई कम से कम उठाना पड़े आपका। एग्री करती है ना मेरी बात से? यस भाई, बिल्कुल करेंगी। भाई अगर आप अपने हस्बैंड से कोई रील शेयर करें, कोई मैसेज शेयर करें, या फिर कोई वीडियो शेयर करें, तो भी वो तब तक नहीं देखा जाता है जब तक आप उन्हें फोन करके ना बोले, सुनो मैंने तुमको ये रील शेयर की है, जरा इसे देख लो, या जरा इस पर कमेंट कर दो, या जरा इस मैसेज का जवाब दे दो। भाई तब तक वो मैसेज ना तो सीन होता है, वो रील ना तो देखी जाती है, और ना ही उसका कोई जवाब आता है। तो हाँ भाई, आप के लिए ये बात सच है कि नहीं, मुझे बताइएगा जरूर। मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोग हाँ लिखने वाले हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर, रेडियो ब्रिस्मानी के फेसबुक पेज पर जाकर बताइए हाँ या ना। और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्मानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: So, Saturday Delight को इस वक्त आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं और इस वीकेंड हो रही है आपके साथ कुछ खास और वो बातें यार जो हम हर हफ्ते मतलब वीक डेज में आपके साथ नहीं कर पाते हैं, वर्किंग डेज में आपके साथ नहीं कर पाते हैं, उन बातों को करने के लिए वीकेंड जो है वो बड़ा ही खास और बढ़िया प्लेटफॉर्म बन जाता है. नहीं हाँ, तो आज इस वीकेंड आप क्या कुछ खास कर रहे हैं भाई हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा. लेकिन फिलहाल चलिए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ, एक और ट्रैक एंजॉय कीजिए और यूं ही एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो प्रसानी 1701 AM.

पड़ोस में भाई नेबर्स की बात ना हो तो मजा नहीं आता। और देखिए नेबर्स को भी शिकायत हो जाती है ना। हाँ मतलब जब मैं जाऊंगी शाम को घर तो नेबर्स मुझसे कहेंगे कि सताक्षी आज तुमने हमारी बात ही नहीं की। तो भाई सुन लीजिए, आज हम बात कर रहे हैं रेनू भाभी की। हाँ रेनू भाभी हमारे पड़ोस में रहती है भाई, और उन्होंने कहा एक बार अपने हस्बैंड से यानी हमारे भैया से कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं कलेश करती हूँ, मैं झगड़ा करती हूँ, मैं तुमसे लड़ाई करती हूँ, तो जाकर जरा औरों की बीवी देखो। भैया भी बिल्कुल तैयार बैठे थे और उन्होंने पलटकर उनको कहा कि दूसरों की बीवी को तुम देखने कहाँ देती हो। बस वो दिन था और आज का दिन है भैया, जबान खोलने लायक बचे नहीं है। हाँ तो भाई अगर आप भी ऐसा कोई जवाब अपनी वाइफ को देने वाले हैं तो सोच समझ के दीजिएगा। चलिए फिलहाल आपके लिए प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। अब इसके पहले कि रेनू भाभी आकर मुझे मारे कि मैंने उनकी सच्चाई और नियर बता दी, उसके पहले मैं भाग लेती हूँ यहाँ से इस गाने के साथ। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिज वाली।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट, जी हां, इस सफर को आप मेरे साथ सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सैटरडे, कुछ खास और बेहतरीन गाने। वैसे इन गानों के साथ मेरा आपके साथ साथ तो बरकरार है, जारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके वीकेंड्स जो हैं वो बस आपसे बिताए नहीं बीतने वाले हैं, है ना। मतलब आप उन्हें बेहतर नहीं बना सकते भाई, आप सिर्फ दूसरों के लिए ही सोचते रहेंगे। आपके लिए बेहतर वीकेंड्स तो हम प्लान करते हैं ना। अब ऐसी बातें हम करते हैं आपके साथ जो आपके मूड को लाइट कर देती हैं, आपके वीकेंड्स को बना देती हैं, और ऐसे गाने सुनवाते हैं आपको जो एकदम मूड को लाइट करके आपको कहते हैं कि भाई अब तो एनर्जी आ गई। तो ऐसे ही गानों की फहरिस्त में एक और ट्रैक प्ले होने जा रहा है, इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी 107.01 FM।

पति देव की बात कर ली जाए, देखिए हस्बैंड्स जो होते हैं उनका फोन हमेशा उनके साथ रहता है, फिर चाहे वो सोएं या जागें, उठते ही सबसे पहले अपना फोन देखेंगे, काम पर भी कहीं हो तो थोड़ी थोड़ी देर में फोन पर नजर जाती रहती है, खाते फोन के साथ हैं, पीते फोन के साथ हैं, और यहाँ तक कि भाई वॉशरूम में जाएं तो भी ज्यादातर लोगों के साथ उनका फोन रहता ही रहता है, होता है ना ऐसा। लेकिन एक वक्त उनकी निगाह फोन पर नहीं रहती, जानते हैं कौन सा वक्त, जब उनकी बीवी उन्हें फोन करती है। अक्सर अक्सर फोन फिर कहीं दूर पड़ा होता है और ना वो उनको सुनाई देता है ना उनको दिखाई देता है, होता है ना ऐसा। कितनों के साथ होता है भाई, बहुतों के साथ होता है ना। अब ऐसे कितनों के लिए ये बात सच है आप हमें बताएंगे जरूर हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पे जाके हमें लिखिए, कमेंट लिखिए फटाक से कि कितनों के लिए ये बात सच है कि उनके हस्बैंड्स को उनका फोन नजर नहीं आता है, बहुत देर तक नजर नहीं आता है। और अगर बाय चांस अगर आप फोन ना उठाएं तो भाई जब वो घर लौटेंगे तो आपको ढेर सारे ताने मिलते हैं, कहाँ थी, क्या किया सारा दिन, एक फोन नहीं उठता तुमसे, कितना जरूरी काम था, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती है बॉस। तो ये सच है ना। हाँ तो चलिए इसे सच्चाई के नाम ये अगला ट्रैक सुनते हैं अभी, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही

सैटरडे डिलाइट आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ। जी हाँ, हो रही है सफर में आपकी, आपसे कुछ खास बातें और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज एक बार फिर से सैटरडे डिलाइट में अपने वीकेंड को कुछ खास नगमों, खास गानों के साथ। ऐसा ही एक गाना भी आपके लिए फिर से प्ले करने जा रही हूँ। इंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ।

डिलाइट आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रसवानी 1701 AM पर। जी हाँ, आपका वीकेंड वाला शो, आपका अपना शो, वो शो जो आपको आपसे मिलवाता है, आपको बताता है कि सारी थकान जब हफ्ते की उतरती है तो कितना मजा आता है। अच्छा, वैसे थकान उतारने के भी सबके अपने अपने तरीके हैं ना, मतलब हर कोई अपना तरीका खोज लेता है। कुछ को लगता है कि दोस्तों यारों से मिल लिया जाए तो थकान उतर जाएगी, कुछ को लगता है यार जी भर के सो लिया जाए तो थकान उतर जाएगी। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वीकेंड पे हिलना भी नहीं चाहते, और उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। मतलब सच्ची में मुझे लगता है कि बस सैटरडे है, संडे है, अब तो कहीं नहीं जाना, अब सिर्फ घर पे ही रहना है। अब मतलब जो भी सामान भी लाना होता है ना बाहर से, तो मुझे लगता है कि एक दिन पहले मंगा लो भाई, फ्राइडे को ले आए, सैटरडे संडे हम नहीं हिलने वाले। तो कुछ लोग मेरी तरह मगरमच्छ टाइप के भी होते हैं जो घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहते, लेकिन कुछ लोग बड़े बिंदास होते हैं, उन्हें लगता है कि यार वीकेंड है, इंजॉय करो, अपनी जिंदगी को जी लो, और बस वो सारे सपने जो शॉपिंग है, दोस्तों यारों से मिलना है, अपना खुद का टाइम अपनों के साथ स्पेंड करना है, पिकनिक पे जाना है, सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके वीकेंड पे बन जाते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए रेडियो ब्रसवानी के फेसबुक पेज और रेडियो ब्रसवानी की वेबसाइट पर। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो ब्रसवानी 1701 AM।

लड़कियों की नजर में, औरतों की नजर में, विमेंस की नजर में अक्सर ना मेल्स मूर्ख होते हैं, है ना, डफर बोलती हैं वो उन्हें, किसी काम का नहीं बोलती हैं, कोई काम नहीं करते हैं, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे नाम जो हैं वो अलग अलग लेडी ने जो अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने घर में सबको दे रखे हैं मेल्स में, बट फिर भी एक डायलॉग जो है वो हम हमेशा बोलते हैं, मतलब मुझे भी लगता है कभी कभी सोच के यार कैसे बोलते हैं, हम मर्दों से कम है क्या? अरे जब मर्द मूर्ख है तो हम अपने आप को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप अपने लिए कोई और वर्ड सोचिए ना। मतलब आज ऑफकोर्स मेल लिसनर्स बड़े खुश हो गए होंगे और अब वो भी ये ताना मारेंगे, लेकिन सच है ना, सोचने वाली बात है कि जो चीज आपको नहीं पसंद है या जिसमें आपको कमियां नजर आ रही हैं आप खुद को, उससे क्यों कंपेयर करते हैं? सोचिए, बहुत सोचने की बात है ये। और इंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

ये था आज एक और सैटरडे डिलाइट जो लेकर आए थे हम आपके लिए, आपके वीकेंड को और भी खास बनाने के लिए। आपको कैसा लगा हमारा साथ आज का ये सफर? मेरे साथ शेयर करना, मेरे साथ बांटना बिल्कुल भूलिएगा मत। मेरी आपसे मुलाकात कल फिर से होगी एक नए सफर पर, नए वीकेंड में कुछ नए गानों और बेहतरीन बातों के साथ। लेकिन सैटरडे डिलाइट में अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, आज ही के दिन आज ही के समय। सो चलिए अगले हफ्ते मिलने के वादे के साथ लेती हूँ इजाजत और विश करती हूँ कि आने वाला जो हफ्ता है, आने वाला जो वीक है, वो आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल हो। यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपनों के साथ रहिए। नमस्कार।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन। आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: तुम्हारी साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896। दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au। That is 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ke tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di soochna deo. Asi tuhanu fire ants de ilaaj layi मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंड्स क्वींसलैंड जां फायर एंड्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ ममा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन ममा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
11: तुम जीत गए।
12: हम जीत गए।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: rejoicing. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तों कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनूं असी

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Aaya kya?
3: Aayega.

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
3: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
2: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

राधे राधे श्रोताओं, रेडियो ब्रिजवाणी 1701 एम पर मैं सताक्षी एक बार फिर से आ गई हूँ भक्ति सागर में आपका और अपना साथ प्रभु से जोड़ने के लिए। यूं तो प्रभु तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिन है, लेकिन अगर साधक की श्रद्धा सच्ची हो तो वो ईश्वर को खोज ही लेता है। तो आइए एक बार पूरी लगन से आज फिर से ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। सुनते रहिए भक्ति सागर सताक्षी के साथ, और चलिए ईश्वर वंदना करते हैं इस गीत के साथ।

भक्ति सागर सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रह्मवाणी 107.1 एफएम पर। और भक्ति सागर में आपको हम ईश्वर से जोड़ने का, उसके साथ अपना एक कनेक्शन बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। वैसे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आज तक कोई खोज नहीं पाया है, लेकिन कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से उन्हें याद कीजिए, उनका नाम जप कीजिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए, तो आप धीरे धीरे उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। या फिर ये कहें कि ईश्वर स्वयं आप तक पहुंचने का मार्ग खोज लेता है, क्योंकि भगवान को जो भक्त प्रिय होते हैं वो भक्त भगवान तक पहुंचे ना पहुंचे, भगवान उन भक्तों तक अवश्य पहुंच जाते हैं। आइए भगवान की भक्ति में लीन होते हुए आगे बढ़ते हैं भक्ति सागर में रेडियो ब्रह्मवाणी 107.1 एफएम पर।

भक्ति सागर सुन रहे हैं श्रोताओं, आप सताक्षी आपके साथ है। और भक्ति का ये पवित्र पावन मार्ग हमें ईश्वर की ओर एक एक कदम लेकर जा रहा है। भक्ति सागर में इस अगली आराधना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुनते रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रजवाणी।

जरूरी थी। ये संसार में किसी से भी छुपा नहीं है श्रोता, हर कोई राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल देता है, लेकिन ये दोनों ही इस दुनिया में अपने कर्म का निर्वाहन करने आए थे। एक वक्त आया जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर, राधा को छोड़कर अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए मथुरा चले गए। राधा के लिए दुनिया वहीं खत्म हो गई थी। कृष्ण ने भी अपना जीवन आगे बढ़ाया और विवाह किया, लेकिन उनका मन राधा में ही रमा रहा। जब ये दुनिया छोड़ के जाने की बारी आई, इस दुनिया की लीला खत्म करने की बारी आई, तो राधा ने श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। राधा श्री कृष्ण के धुन की दीवानी थी, तो उन्होंने अपने अंतिम वक्त में भी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वो उन्हें मुरली सुनाए। बस भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बनानी शुरू की और राधा जी ने अपनी आखिरी सांस ली। राधा के जाने से, उनके विरह से भगवान श्री कृष्ण इतना व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने उस बांसुरी को तोड़ दिया और फिर कभी उससे कोई धुन नहीं निकली। ये होता है प्रेम, और इसी प्रेम को आइए साकार रूप देते हैं इस अगले गीत में। सुनते रहिए सताक्षी के साथ भक्ति सागर रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एफएम पर।

श्रोताओं, अक्सर ये कहा जाता है कि नाम जप बहुत जरूरी है, लेकिन कभी मन में ये सवाल जरूर आया होगा आपके कि क्यों क्यों नाम जप जरूरी है, और क्या हम अपने सभी कामों को छोड़कर बस भगवान में लीन हो जाएं, यही नाम जप है? नहीं, भगवान ये नहीं कहते कि आप उनमें लीन हो जाएं, हर वक्त सिर्फ उन्हीं का नाम जपें। भगवान को तो वो भक्त भी प्रिय हैं जो रोज उनसे झगड़ा करते हैं, क्योंकि इसी बहाने वो उन्हें याद करते हैं। भगवान का कहना है कि आप अपने हर कर्म को करते हुए अगर उन्हें याद करते हैं तब आप उनके सच्चे भक्त हैं। घर में अगर बच्चा रो रहा है और आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं, वो ढोंग या दिखावा बन जाता है। अपने कर्मों को करते हुए जितनी बार भी सच्चे मन से ईश्वर को पुकार सकें पुकारिए, और अगर कुछ समय बैठकर उसका नाम जप कर सकें तो आपके पाप निश्चित रूप से कटने शुरू हो जाते हैं। भगवान का नाम पापों को काटने की सर्वश्रेष्ठ औषधि है और उन तक पहुँचने का मार्ग है। दूसरा कोई भी मार्ग भगवान तक आपको नहीं पहुँचा सकता। आइए आगे चलते हैं भक्ति सागर में। सताक्षी के साथ सुनते रहिए भक्ति का ये सफर।

राम नाम तो ही जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। जी हाँ, राम यानी रमना, जो हर ओर है, हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर चीज में रम रहा है, वही राम है। राम की खोज में आप दर दर भटकते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, लेकिन राम नहीं मिलते। अगर आप हर प्राणी में राम को देखना शुरू कर देंगे तो राम स्वयं आपको मिल जाएंगे। आइए तो राम में लीन होते हैं, राम में रमते हैं इस अगले गीत में। सुनते रहिए भक्ति सागर, आपके साथ सताक्षी है।

तो भक्तजनों, ये था आज भक्ति सागर का एक और स्वरूप, जिसमें आज हम आपके साथ जुड़े कुछ बड़े ही प्यारे भजनों के साथ। और इन भजनों के साथ हमारा आपका साथ जारी रहेगा, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग आपको भी ढूंढना है और हमें भी। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे, और ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपको हमेशा आनंदमय रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: ये है रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में रविवार के सुबह 7 बज चुके हैं। मैं आपके साथ देता हूँ हर रविवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत, और फिर 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा खास इस्लामिक प्रोग्राम जिसमें आप सुन सकते हैं 7 से कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वालियां, और फिर उसके बाद आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट सवाल और जवाब मौलाना फजल दाद के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ चुने हुए हम नात और कव्वाली के साथ, उसके बाद मौलाना फजल दाद के साथ सवाल और जवाब, हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वाली, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार की सुबह 7 बजे से रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिजबन। और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम, और आप सब सुनने वालों को फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: خاندان کے اندر اپنے کام کے اندر اپنے علاقے کے اندر تو اس کے اوپر کبھی بھی گمنڈ نہیں ہونا چاہیے کبھی تکبر نہیں ہونا چاہیے یو شوڈ نیور شو آف اینڈ نیور ہیو دی ایروگنس دیٹ آئی ایم ویری اسٹرانگ اور آئی ہیو اے لاٹ آف بیکنگ آئی ہیو اے لاٹ آف اتھارٹی یو شوڈ نیور فیل arrogant about these things but stay humble because Allah is the strongest Allah is the most powerful human beings we are insignificant in comparing to the strength and the power and the knowledge and the authority of Allah ہماری کوئی حقیقت نہیں حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کے اندر تو اس لیے اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے فی الحال بہت سارا مال دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے وہ ذات کے جس نے آپ کو بہت سارا مال دیا ہوا ہے وہ اگر چاہے تو اس مال کو بڑے ہی تھوڑے عرصے کے اندر ختم کر دے If Allah has given you wealth, never be arrogant about it. In fact, be humble because that being who has granted you this huge amounts of wealth, he is able to take it off you in a very short period of time and then make you and humiliate you and make you beg in front of the people. The same people that will beg into you, a time could come, and I have seen this in my real life, that those people who would come and beg to you, now you are begging to them. اپنی زندگی کے اندر میں نے ایسے دیکھا ہے کئی مثالیں ایک وقت تھا کہ فیکٹری کے مالک تھے بہت بڑی فیکٹری اتنی بڑی فیکٹری تھی کہ جب مجھے دعا خیر کے لیے بلایا تو اس کے باہر انہوں نے مجھے گھمایا کہ آپ کو چکر لگواتے ہیں دکھانے کے لیے پھر آپ دعا خیر کریں اس کے باہر گھومتے گھومتے مجھے ڈیڑھ گھنٹہ لگا اٹ ٹک می آلموسٹ ون اینڈ ہاف آور جسٹ ٹو واک آن دا آؤٹ سائڈ آف دس ہیوج کمپلیکس That's how big it was. And Allah had given them wealth, Allah had given them health, Allah had given them authority. But I noticed in a very short period of time, ان کے اوپر کچھ حالات اس طرح آئے کہ وہ سب کچھ ان سے ختم ہو چکا فیکٹریاں ان سے ختم ہو چکی جو لوگ وہاں تھے وہ ختم ہو گئے پروڈکشن ختم ہو گئی جو کچھ تھا سب کچھ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اینی نیمز آئی نیور ول بیکاز دیز آر کانفیڈینشل تھنگز اور یہ عبرت کے طور پر میں واقعات بیان کرتا ہوں دوز پیپل ہو مائٹ نو اباؤٹ اٹ دیٹس فائن دوز ہو ڈونٹ الحمد للہ یو ڈونٹ لیکن ان کی حالات پھر اس طرح آئے کہ ہم ایک مرتبہ ان کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے اور عید کا موقع تھا عید کے کچھ دنوں کے بعد اور جب ان سے ملاقات کی گئی پتہ چلا وہ سو رہے تھے جب ہم نے پوچھا بھائی 12 بج رہے ہیں ابھی تک آپ سو رہے ہیں کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ رات بھر کام کرتے رہے ٹیک اوے کے اندر برتن دھو رہے تھے اور برتن کے لیے تھوڑے سے ہمیں پیسے دیتے ہیں اور اس سے گزرانا چلتا ہے رات کو 3 بجے تک وہاں ہم کام کرتے رہے کیونکہ عید کی وجہ سے لوگ وہاں کھانا پینا کافی لیٹ تک آتے رہے تو میں برتن دھونا صرف میرا کام تھا برتن دھونا یہ وہ شخص تھا کہ جو فیکٹری فلور کے اوپر چل پھر کر اس کے نیچے 250 آدمی کام کر رہے تھے اس کے اشارے کے اوپر اتنی مشینیں چل رہی تھی اتنے کمپیوٹر چل رہے تھے شوفر ڈریون وہ پیچھے سیٹ کے اوپر بیٹھ کر جیگوار گاڑی کے اندر آگے شوفر ان کو چلا کر چلاتے تھے لیکن حالات آئے تو یہ ہوا کہ جب میں نے خود ان کے حالات دیکھے آئی سو دیز مائی سیلف کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کے حالات بدل دیے तो कहने का मकसद यह है कि इस किस्म की जो सूरतें होती हैं, दीज सूरत इन द कुरान द टीचर्स दैट पावर एंड अथॉरिटी सिमिलरली द स्ट्रेंथ इट इज ओनली एंड अल्टीमेटली फॉर अल्लाह. अल्लाह की यहां ताकत है, दबदबा है, रौब है, और जब इंसान इन चीजों के ऊपर घमंड में आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर बाज़ औक़ात उसको बहुत ही कड़वा सबक सिखाते हैं. बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि मेरे पास अब पोजीशन भी आ गई, मर्तबा भी आ गया, मैं इलाके का जागीरदार हूं, मैं अपने फैमिली का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूं, अपनी बिजनेस का लीडर हूं, अपने इलाके का लीडर हूं, चाहे टाउन हो सिटी हो, वेदर यू आर द लीडर ऑफ योर टाउन सिटी ऑफ योर ओन लिटिल वार्ड वेयर यू आर लिविंग योर लिटिल विसिनिटी, अपने मोहल्ले के आप लीडर हो, वेदर यू आर द लीडर ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ मेनी कंट्रीज, लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जब ये जहन के अंदर रहे कि मैं ये जो मर्तबे के ऊपर फाइज हूं, आई एम ऑन दिस स्टेटस, इट इज ओनली बिकॉज अल्लाह हैज गिवन मी अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज टेस्टिंग मी थ्रू दिस एंड दिस इज ऑल्सो माई टेस्ट. ये भी मेरे लिए एक इम्तिहान है, ये भी मेरे लिए एक इम्तिहान है. ये नहीं कि मैं इस मर्तबे तक खुद पहुंच गया हूं, मैं इस मर्तबे तक खुद किसी सूरत के अंदर नहीं पहुंच सकता. अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है. मेरे एक दोस्त थे तो वो मुझे वाकया बयान कर रहे थे. वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वाज टेलिंग मी ए स्टोरी एंड ही सेड दैट वन ऑफ हिज कॉलीग्स ही केम इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. आई एम नॉट गोइंग टू नेम द ऑर्गेनाइजेशन because some of you might begin to understand and know who the people are. He said he came into this organization and he was very polite, very hardworking, and then within a very short time the owner of the organization said, I want to make you a manager over my this branch. Is branch ke upar main aapko manager banana chahta hu क्योंकि मैंने देखा कि आप बहुत मुखलिस हैं, बहुत हार्ड वर्कर, आप बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि वक्त आपका शुरू होता है उससे पहले आप आ जाते हैं. जिस वक्त हमारा स्टोर, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिस वक्त बंद होते हैं उस बंद होने के बाद तक आप रहते हैं. यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बड़ी मेहनत से करते हैं. यू सेटिस्फाई ऑल द कस्टमर्स एंड ऑल द क्लाइंट्स. आई एम गोइंग टू मेक यू अ मैनेजर ऑफ दिस होल ब्रांच. इस पूरे ब्रांच के ऊपर आप मैनेजर हैं. उसने फिर भी मेहनत की. फिर अचानक इस तरह हुआ कि उसके जहन के अंदर यह बात आई कि भाई देखो, मेरा कमाल था. इट वॉज बिकॉज ऑफ द परफेक्शन इन माई सेल्फ दैट आई हैव रीच्ड दिस स्टैंडर्ड. This click happened. My friend says, I don't know how this mentality of his changed. Maybe it's because when he became the manager and those who were working under him began to overpraise him, or maybe because he came into this situation. Usne fir chaplusi karne ki koshish ki aur jo malik tha usne kaha ki chalo in teenon branchon ke upar main aapko, मेरे जो तीनों ब्रांच हैं उनके ऊपर आपको मैनेजरी करनी है. इधर जाना है, उधर जाना है, आप इनके ऊपर सिर्फ घूमते फिरते रहो, और मैं जो हूं अब मुझे ये काम करना नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने साथ इसके अंदर शिरकत भी देता हूं. आई एम गोइंग टू गिव यू अ पार्टनरशिप इन हियर एज वेल. उन तीनों ब्रांचों के ऊपर वो कहते हैं, वो दोस्त जो है, एक मरतबा उसने सब साथियों को बिठाया हुआ था. उसने उनको कहा कि यार तुम काम ही नहीं करते हो, तुम इस तरह ही हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है. यू डोंट हैव एनी एबिलिटीज, यू डोंट हैव दिस थिंग, यू डोंट हैव दैट थिंग, यू डोंट ट्राई एंड डू दिस. लुक एट मी, आई हैव ट्रैवल्ड अप हियर सो क्विकली विद इन अ फ्यू इयर्स, नाउ आई आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ ऑल दीज थ्री ब्रांचेस, इन तमाम ब्रांचों का, तो उसके अंदर थोड़ी सी तकब्बुर जैसी आ गई। एक तो यह कि इंसान दूसरों को इबरत के तौर पर कहता है और उनको समझाने के लिए, एक होता है तकब्बुर के साथ। अल्लाह का अजीब करना, थोड़ा ही अरसा हुआ और उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक हो गया, सॉरी नॉट ब्रेन हेमरेज, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक जैसे हो हुआ। He had a stroke in the brain. That's what my friend was telling me. और उसका नतीजा ये हुआ कि अस्पताल के अंदर, अब वो कोमा के अंदर, कई दिनों के बाद जब वो कोमा से, when he woke up from the coma, he was finding it difficult to talk because certain parts of his brain which controlled his speech, दिमाग के वो हिस्से कि जिससे इंसान बातचीत करता है, सुनता है, अपनी जबान को हिलाता है, अल्फाज निकालता है, बनाता है, वो दिमाग का उसका हिस्सा खत्म हो गया था। और वही शख्स कि जिसके इर्द गिर्द कभी गाड़ी आती कभी गाड़ी जाती, उसके एक सिग्नेचर के लिए पांच पांच आदमी बाहर कमरे के लाइनअप के लिए खड़े होते कि मुझे सिग्नेचर दो ताकि ये प्रोडक्शन हो जाए, सिग्नेचर इन वॉइस के ऊपर ताकि फलां चीज ऑर्डर हो जाए, इसके सिग्नेचर के लिए, इसके इसको खाने बनाने के लिए अक्सर जो एम्प्लॉज और दूसरे जो ताल्लुकात और दीगर जो सेल्स पर्सन होते थे, पीपल हु वांट टू सेल यू थिंग, सेल्स पीपल फ्रॉम अदर कंपनीज वुड ट्राई एंड टेक हिम आउट फॉर फूड एंड दे वर ऑल फाइटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट सो दैट दे कुड टेक हिम and give him food, and on the food we can talk some business as well, and try to sell him things for his organization, try to persuade him, and all those people. There was a time when there was lines outside his office just so that he could sign papers, sign of orders, sign of invoices, sign of contracts, etc. And there were people vying to invite him at top restaurants for food, so that on food we're going to talk about business and be a salesperson, try to get him to get. There was times when people were dying for an, to see him. Now, he lay in hospital after the first week. My friend said, first week we had family and friends and a few of the employees come to visit him. पहले एक हफ्ते के अंदर लोग उसके आए पूछने के लिए, उसके बीमार पुरसे के लिए. उसके बाद उसने कहा, दो महीने वो वहाँ लेटर रहा. Other than his own wife, उसके जो बीवी थे और उसके जो बच्चे थे, कोई भी उसके पास नहीं आया. दो महीने वहां रहा. Of course, उसके बाद उसको घर ट्रांसफर कर दिया. लेकिन कहने का मकसद कि बाज़ औकात इंसान समझता है कि मेरा ये कमाल है कि मैं इस दर्जे तक पहुंच गया हूं, या मेरा कमाल है कि मैंने ये काम कर दिया. याद रखना, तुम्हारा कमाल नहीं है. वो रब अगर चाहे तो इस शख्स की तरह एक रग आपकी खींच दे, ब्रेन का स्ट्रोक हो जाए और आप वहां बिस्तर से हिल ही नहीं सकते. अल्लाह इज केपेबल ऑफ पुटिंग यू इन अ स्टेट वेयर यू कांट इवन मूव एट ऑल. यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट बेड. बल्कि इंसान उस वक्त जो है अपनी टॉयलेट, बाथरूम, अपनी सफाई, उसका भी मोहताज हो जाता है, और फिर दूसरा शख्स उसके पर्दे को खोलकर, उसके इजार को, ट्राउजर्स को, उसके अंडरवेयर को खोलकर अब उसको पेशाब, इस्तिंजा, पखाना, टॉयलेट, बाथरूम पूरी करवाता है. तो अ पर्सन शुड समटाइम्स थिंक that I am weak, but if Allah wants, He can grant me this high level of status. He can grant me wealth. Allah can grant me health. Allah has granted me authority. Allah has granted me influence upon people. But at the same time, a person must keep in mind that this Allah, who has granted me all this as a favor, it is up to him. If he wants, within very, very short moments, he can take all of this back again. Agar Allah chahe, to bahut hi mukhtasar waqt ke andar ye sab ka sab mujhse wapas bhi le sakta hai. अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर इंसान को ढील देते रहते हैं. And that's why it says that when you are transgressing the boundaries of Allah, जब आप अल्लाह के हुदूद की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो आपके ऊपर नेमतें कर रहा है, तो याद रखना ये वो ढील दे रहा है, ये भूल नहीं गया है, वो आपको ढील दे रहा है, वक्त दे रहा है. अल्लाह हैज गिवन यू अ चांस, अल्लाह हैज गिवन यू टाइम. जस्ट बिकॉज you are still in the name of Allah, although you are transgressing His limits, you are disobeying Allah, you are being ungrateful to Allah, but Allah is still being nice to you, then think this as a chance Allah has given you. Otherwise, agar Allah pakadne par aa jaye, if He wants to afflict you with anything, then within moments a person's whole life could be changed and the future of this person's life. ये जो मैं आपको मिसाल दे रहा था, उसके बाद वो शख्स दोबारा उस बिस्तर से उठ नहीं सका, और जब तक उसके अय्याम थे उस वक्त तक वो शख्स वहीं लेटा ही रहा कई सालों तक. एक वक्त था कि उसके सामने सौवों की तादाद में लोग काम कर रहे थे, अब एक वक्त है कि उसकी बीवी और उसके दो बच्चे, और जो बच्चे हैं वो भी पूरे दिन बाहर होते हैं, कभी मुलाकात होती है आ जाती है, उसके वो तने तनहा उधर अपने अकेले फ्रंट रूम के अंदर हॉस्पिटल बेड के ऊपर. हॉस्पिटल ने उसको बेड दे दी थी, द हॉस्पिटल हैड गिवन हिम अ बेड एंड सेड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, यू जस्ट लिव योर डेज पीसफुली क्वाइटली एंड रिस्पेक्टफुली एट होम. तने तनहा, जैसे मैंने कहा पहले हफ्ता डेढ़, फर्स्ट वीक एंड अ हाफ वीक पीपल केम टू विजिट हिम एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, बट आफ्टर दैट He was lonely. तो इसलिए कहने का मकसद कि from the story of Abraha, there's many lessons we can learn, and time doesn't permit me to go any further. But I'm just going to remind you that Abraha in this surah Al-Fil, the surah, one of the shorter surahs of the Quran, Allah has displayed this story to us. Allah has relayed this story to us. But the message behind the story is very important. Duniya ke andar aap dekhenge, duniya ki tareekh mein, in the history of the world, you will notice huge empires. They spread and they increased and they spread across the world from one country to another country, in fact to another continent. But then, when the demise of those empires came, then it was restricted to a continent, and then from a continent restricted to its own self. बड़े बड़े आपने देखे होंगे कि लोग जो अपने आप को बड़ा ताकतवर, बड़े मालदार, बड़े इज्जतदार समझते थे, वो किधर हैं? अब वो कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं, वहां उनका कोई पूछने वाला नहीं है. और जिन्होंने दीन के साथ ताल्लुक रखा और जिन्होंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, दोज पीपल हु लेड द लाइफ अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ अल्लाह, द वे शोन बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू विल नोटिस दोज रिस्पेक्टफुल पीपल, दे विल बी इन द ग्रेव्स एंड पीपल विल कम एंड विजिट देम, पे देयर रिस्पेक्ट्स टू देम, उनके लिए दुआएं करेंगे, दुआएं मगफरत करेंगे, उनके लिए इस साले सवाब करेंगे, खुद भी उनको याद करेंगे और बाद वालों के सामने उनका तज़किरा भी करेंगे. और जो दुनियावी तौर पर इस तरह अपने आप को समझे कि हम बड़े ही ताकतवर हैं, बड़े ही हैकल किस्म के लोग हैं, उनकी मौत के वक्त हो सकता है फ्यूनरल उन्होंने बड़ा कर दिया होगा. It could be that they had a huge funeral procession and due to the media they had huge coverage. But once they've been placed in that grave, they've been left forgotten. In fact, because of their arrogance, rather than saying nice things about them, history will remember them in a bad way, but also the people will be talking bad about them. They had no respect in the dunya, and they have no respect after they've left this world. Unki na duniya ke andar izzat जो उस वक्त दो तीन आदमी आपके सामने चापलूसी के तौर पर अच्छी बात कह देते हैं लेकिन बाकी तो हजारों की तादाद में आपका बुरा भला कह रहे हैं. They are all saying bad things about you. You have no respect in any of their eyes. It's only that little circle that's around you of people that are praising you. Otherwise, the wider ocean of people are criticizing you and saying nasty things about you and are disrespecting you, are hating you. Do not have any honor and dignity for you. आपके लिए कोई उनकी दिलों के अंदर इज्जत नहीं है और जब आप मर जाएं तो जो इज्जत एहतराम चंद लोगों के दरमियान जो सामने आपको चपलूसी के तौर पर बतला रहे थे वो भी खत्म हो गया है और उन्होंने दूसरे की चपलूसी करनी शुरू कर दी और नतीजा ये निकला कि जिंदगी के अंदर भी बेइज्जत रहे जिंदगी के बाद भी बेइज्जत रहे क्योंकि आपने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी. ऐसे करते हैं किसी और मौके के ऊपर बाकी जो तफसीलात हैं वो जिक्र करूंगा लेकिन एक दो बातें और अर्ज करते जाऊं और वो ये कि भाई दो साल गजा के ऊपर फलस्तीन के ऊपर वेस्ट बैंक उन इलाकों के ऊपर जो हालात आते रहे तो उस वक्त तो हर एक उनकी बातें कर रहा था कि वहां बड़ा जुल्म हो रहा है लेकिन जो ही वो हालात कम जरा हुए तो लोगों ने बातें चीजें करना शुरू कम कर दिया. पीपल हैव बिगन टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट द ज़ुल्म दैट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन ऑल्दो इट इज स्टिल हैपनिंग स्पोरैडिक टाइम्स एंड नॉट ओनली इन दोज एरियाज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ज़ुल्म अभी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो रहा है तो जहां कहीं भी जुल्म हो सबसे पहले तो दुआ करते रहे कि या अल्लाह जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है या अल्लाह उस जुल्म को खत्म फरमा तू मजलूमीन की मदद फरमा और जो जालिमीन है उनको समझ दे दे ताकि वो जुल्म करने से रुक जाए. और आपको भी अगर पता चले न्यूज के जरिए नॉट फेक बिकॉज दिस फेक न्यूज इज वेल गोइंग ऑन लेकिन सही खबरों के जरिए आपको पता चले व्हेन यू फाइंड दैट दिस जुल्म गोइंग ऑन then if you can't stop it physically by your hand and be there then one of the things you could do is pass that news on to somebody else because they may pass it on to somebody else and it may reach those people who do have influence or enough people get together who may have influence so isliye kam se kam itna zarur kiya kare ke zulm ko jab dekhe to khamosh na ho when you see injustice when you see cruelty when you see tyranny not to stay silent if you can't physically stop somebody ab agar unko khud rok nahi sakte then the least you can do is pass that news on to other people because it could be that they may have the power or the influence or a strategy of minimizing or stopping this isi ke sath aaj ke session ko khatam karte hain mukhtasar dua ke sath الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين تو هم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما يا الله تو هم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہے تو ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں درمیان میں نارملی بریکس ہوتی ہیں आज कुछ सिस्टम के अंदर पता नहीं कोई बात थी तो वो ब्रेक सामने नहीं आई, लेकिन चलो इस बहाने से लंबी बातचीत होती रही। ये याद रहे कि हमारा ये प्रोग्राम सनराइज रेडियो के ऊपर हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव हुआ करता है। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज आवर वीकली प्रोग्राम एवरी फ्राइडे इवनिंग्स बिटवीन 8:00 and 9:00 यूके टाइम। मैं हूं आपका मेहसबान मौलाना फजलदाद और ये है हमारे हर हफ्ते का प्रोग्राम शाम को फ्राइडे शाम को जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अभी आप सुन रहे थे आलिम ऑन एयर हजरत मौलाना फजलदाद के साथ।
2: अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
3: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग और बरतर जात है।
2: अभी आप सुन रहे थे आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं आलम ऑन एयर हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। आपको याद रहे हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम इस स्टेशन पर हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। और अगले बार तक के लिए फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड नाउ आई इनवाइट यू टू लिसन टू अनदर सेगमेंट ऑफ वेदवाणी, वेदवाणी कवरिंग रिलीजियस कल्चरल एंड फैमिली मैटर्स। वेदवाणी रिसर्च्ड, रिटन, प्रेजेंटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय श्रीमान नंद किशोर दास प्रभुजी।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर क्या, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल से मेरा संपर्क नहीं था आपके साथ। रिमोट एरिया से कर रहा हूँ प्रोग्राम दोस्तों। अभी शायद ठीक हो गया होगा, होपफुली हमारी जो आवाज़ है आप तक पहुँच रही है। एक बार फिर आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। जितने भी हमारे इंटरनेट लिसनर्स हैं, चलो आपका भी स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। और जी हाँ दोस्तों, ब्रिस्बेन के लिए कहा गया है कि कुछ समय समय से बारिश शायद होगी, और आने वाला हफ्ता जो है कुछ बारिश भी है। आज के लिए कहा गया है कि 60% चांस कहा गया है, और आज का 22 डिग्रीज रहेगा मैक्सिमम। कल के लिए कहा गया है कि 70% चांस, तो रेन 40 and 23 रहेगा। ट्यूसडे को कहा गया है कि 70% चांस, तो रेन 15 and 23। और वेंसडे के लिए कहा गया है 15 and 24 रहेगा, 70% चांस ऑफ रेन। और फिर थर्सडे को 90% चांस दिया गया है दोस्तों, 16 and 23 रहेगा। और अगले फ्राइडे को भी 80% चांस, 16 and 23 रहेगा। सैटरडे को 60%, 15 and 23 रहेगा। तो ये रहा कुछ मौसम का खबर दोस्तों आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, और अभी सुबह सुबह आपने धार्मिक प्रोग्राम सुने हैं, और इस कार्यक्रम के बाद में आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे, और फिर उसके बाद रोहित सिंह, और फिर सुशीला के साथ, और 5 बजे से आप शशि झोकन के साथ हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किशोर कुमार से इस गीत को आप सुनेंगे दोस्तों। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

और दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे, और अगर आपका वेडिंग एनिवर्सरी है तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। होपफुली यू विल हैव अ लवली लवली वीकेंड, और अपना सेलिब्रेशन भी करेंगे फैमिली के साथ शायद। जी हाँ, चलिए अगला जो गीत है एक बड़ा ही ब्यूटीफुल ड्यूवट है दोस्तों, और ये गोल्डन ईरा हिंदी फिल्म म्यूजिक का बहुत प्यारा सा गाना है, और इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर और आशा आशा भोसले फ्रॉम द फिल्म गुमराह। म्यूजिक को कंपोज किया था रवि, और गीत को लिखा था शायर लुधियानवी। तो चलो दोस्तों दोस्तों सुनते हैं गीत का बोले आज।

और दोस्तों 23 मिनट हो गए हैं 9 बजकर, और आपको याद दिला दूं कि 10 बजे से आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ। और चलिए अगला जो गीत है, शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ गाना, मैं शायर तो नहीं।

पर चलिए दोस्तों, अगला जो गीत है ये मैंने लिया है फिल्म श्री 420 से। शायद उस फिल्म का सबसे प्यारा गाना रहा होगा और इसे गाए हैं मन्ना डे और साथ में हैं लता जी। म्यूजिक को दिया है शंकर जयकिशन और शैलेंद्रा ने लिखा है इस गीत को। और ये गीत पिक्चराइज हुआ था राज कपूर और नरगिस पर। जी हाँ, शायद आप इस मूवी को देखे होंगे जब एक छतरी के नीचे दोनों चल रहे थे और इस गीत को गा रहे थे। तो चलो, मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको अच्छी तरह से। अगर आपको नहीं याद है तो फिल्म आप देख ले दोस्तों।

और चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, ये फिल्म काश्मीर की कली का गाना है और रफ़ी साहब आशा भोसले के साथ दोनों ने मिलकर गाए हैं इस गीत को। और पर्दे पर कौन था इसमें? शमी कपूर और कौन था भाई इसमें? शमी कपूर और शर्मिला टैगोर, जी हाँ, तो आपको शायद याद हो गया होगा। और बहुत प्यारा गीत है दोस्तों, दीवाना हुआ बादल, तो चलो सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत, और ऐसा कोई नहीं होगा जो इस गीत को नहीं जानते हैं दोस्तों, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे और लगातार कदमों से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिए मुन्ना भाई, सब कुछ आपका ठीक रहेगा। जी हाँ, चलिए किशोर कुमार का गाया हुआ गाना।

ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, क्या बात है। देखिए दोस्तों, याद रखिए, रफ्तार से ज्यादा अहमियत दिशा की होती है। धीरे चलना कोई समस्या नहीं, बस रुकना नहीं चाहिए। जी हाँ, चलते रहे, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुमन सुमन कल्याणपुर अब हमारे साथ नहीं है दोस्तों, और रफी साहब के साथ मिलकर इस गीत को गाए हैं।

और 10 मिनट रह गए हैं दोस्तों इस कार्यक्रम में, और इसके बाद आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ, तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। चलो मैं कुछ प्रीच करने जा रहा हूँ आप लोगों से, जो मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन कहा गया है दोस्तों कि ठंड के मौसम में, जैसे भी यहाँ पर बहुत ठंड है, प्यास हमें कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी उतना ही चाहिए होता है, ठीक है। तो दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, ठीक है दोस्तों, और पानी तो पीना ही चाहिए आपको। तो चलिए कार्यक्रम का जो अगला गीत है, और इस गीत को गाए हैं पंकज उदास ने, आप जिनके करीब होते हैं, वे बड़े खूब खुश नसीब।

जी हाँ दोस्तों, आप जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुश नसीब होते हैं। और चलने का वक्त हो गया दोस्तों, इसके बाद आप हो जाएंगे फिरोज भाई के साथ। लेकिन चलते चलते ये कहना चाहूँगा आपसे, कहते हैं कि सूरज हर सुबह ये याद दिलाती है कि अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, नई शुरुआत हमेशा संभव है। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखिए इस बात को। चलिए इसी गीत के साथ हम निकल रहे हैं, और कल सुबह मैं मिलूंगा वंस अगेन अलोन। और अब इसके बाद आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, हैव अ लवली लवली डे। याद रखिए रोहित सिंह है, और फिर उसके बाद सुशीला है, और 5 बजे से आप शशि झोकन के साथ हो जाएंगे, और फिर उसके बाद शताक्षी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं कल सुबह। नमस्कार।

0: रेडियो ब्रिस्बानी 1701 ब्रिस्बेन।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनका।
2: दिलों को झंकृत करें,
3: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
0: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

जी हाँ, यही वो जगह है और यही वो दिन है। रविवार की सुबह 10 बज चुके हैं और मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान। अभी से लेकर 12:30 बजे तक हर रविवार की सुबह मैं आपका साथ देता हूँ। वास्तव में मैं आपका साथ देता हूँ रविवार की सुबह 6 बजे से डिवोशनल संगीत के साथ। अगर आप one of those early risers, why don't you join me? Start your Sunday with me with devotional Sangeet. उसके बाद इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ, और उसके बाद आप सुन सकते हैं वेद वाणी। लेकिन 10 बजे से मैं आपके साथ होकर सफर करता हूँ यादों के साथ, यानी कि डाउन मेमोरी लेन। कभी खुशबू, कभी आंसू, तो कभी नगमा, लेकिन सब के सब ये है मेरी पसंद और ये है मेरी प्लेलिस्ट और ये है यादों का सफर।

अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप इसको बार बार सुनेंगे, और अगर हमारे प्रोग्राम को आप अक्सर सुनते हैं तो आप जानते हैं कि हम आपको ले चलते हैं यादों के सफर में, और मैं चाहता हूं जब आप सुनते हैं यादों के सफर तो गौर भी कीजिए Whoever you when you first heard this song, because quite a few of the songs are more than 60, 70 years old. Mostly hits of 50s, 60s and 70s. ऐसे ही गीतों से अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं. ये है हमारी गीत माला. अपने हमारा साथ देते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से. ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, और ऐसे गीत जो 50s, 60s, 70s से चुनी हुई होती है. हमारी प्लेलिस्ट सबसे खूबसूरत है, इसलिए नॉट बिकॉज व्हाट आई सेलेक्ट बट व्हाट आई रिजेक्ट. कभी खुशबू, कभी आंसू, तो कभी नगमा, कभी सुर, कभी ताल और कभी रिदम. लेकिन आज सुबह चुने हुए रोमांटिक लव सॉन्ग्स, सरल संगीत, इजी लिसनिंग, यादों का सफर. शुरुआत कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं साल 1965, फिल्म के नाम काजल. आपको याद होगा पर्दे पर धर्मेंद्र के साथ